नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवार शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मद कियो

जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद वर आलम। निरंकार निबकार निर्लंब आद अनिल अनाद असम। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेम न पापत बेदा।

कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा।

रह सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर संत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

को रहण रजाई। मुंदा संतोख शर्म पत झोड़ी ध्यान की करह में भूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीताई पंथी।

जत पहरतिज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौ खलावन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिन कारु नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक

नमस्तानन्ते नमस्तमहन्ते नमस्तस्त्रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योगयोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वे प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है आजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूझ है असूझ है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अनीक है नृश्रीक है नृलंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है आलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते

प्रभंगी प्रमाथे समस्ति बेपुते कलंकं बिनां नेकलंकी स्वरूपे नमो राजराजे स्वं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे नमो राजराजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखिय भरमिय भोगिय भोगते नमो जोग जोगे स्वं परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो सासा नमो पू पूपे नमो दान दान नमो मन मान नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधोर दर्दंग गंगोग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सद्दाता दयालं चेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्ता सतामं तेरा जोर चचरी शन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पजंग पर्याद शांद अगंध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं अप्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतां नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी

में पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परम न पित्रै न कर्मं न काये जन न जाये न चित्रै न मित्रै प्रेह पवित्रै प्रति सैदि सैदृश्य कृश्य भगवती संत्वै प्रसाद कहते कि आ शिज देशे के आ भिज भेसे के आ गंज कर्मे के आ पंच परमे के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभाय के धर्म तो जाके आ सोक भरने के सर्वा भरने कि जगतं कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपम अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन के कैदि के रोजी रजा के रही मेरे हक है कि पाक बेऐब है कि गैब लुगैब है कि अभुल गुना है कि साह अनसाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज करीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र पोख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सैव प्रधानी है कि सर्वत्र जापी है कि सर्वत्र थापी है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुर सलामे सलीकुत मुदामे गनीम उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है मिलन दुल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमा मैं रुजू उल निदान है हरी फुल अजी में रजा एक यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है आगाध है अनूप है उवंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्य अगंजे अगाध्य सुपं सर्व भाग्य सुसर्वानुराग अनुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अशुद है किन्नरकम प्रणास है प्रतिहूल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चर प्रशांत व प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता रसावलशंत व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमात्मे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रै न पुत्रै न सुत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै।

है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, सकरुणाकर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड सह खल खंड सह परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थापया कृताकृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृता अमृत है, अजवाकृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात छंद।

कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरे हो लिए सास मुंद्रन नाथ फिरे।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिंह भयो शंकर कैठा सिंगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंप व्या जुगा स्वरूप संयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निक नहीं है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि ने हरि हो ताकि ताप तनक मैं हरि हो रे सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश व सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलविक सकल दे को हरता दुष्ट दोखीन को शय करता श्री अस्तु जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावे सोई दुख न तसाय।

पाए गहे जपते तुमरे तपते को आखरे नहीं आन्यो। राम रहीम प्राण पुराण ने कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बपेद कहे हम एक ना जान्यो।

संभाले। अगम में वो तेरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया कने तेरा अपना आप तू जान है जी जन सब खेल तेरा क्या कुआ बखाने। आखे तो विखे सब तू है जिन जग तू पाया, कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोई दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा की।

कि कर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न बसाया, गुर प्रसादी हर मन न बसया।

कुदरत दसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनना

उदृत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत

0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: पौचुका निरपो हुए बसे
0: सगल व्यात मात का नसे
1: जिसका सातिन कृपा तारी
0: सा संग जप नाम रे
1: हित पाई चुके परम गमन
0: सो नानक हर हस सर्वन
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
0: कला तारजन सकले मोही
1: अपने चित्र पर आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए।

0: पावे तसलाए मलाए।
1: कवन निकट कवन के ये दूर,
0: आपे आपा परपूर।
1: अंतर्गत जिसे आप जनाए,
0: नानक ते जन आप बजाए।
1: सर्व भूत आप बरतारा,
0: सब नैना पेखन हारा।
1: सगल समग्री जा का तना,
0: आपन जास आप ही सुना।
1: आवन जानिक खेल बनाया,
0: आज्ञा

परम सत्कारयोग गुरु की साजी निबाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चबर तखत छतर दे मालक गुरता गदी ते विराजमान जागदी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का सुमेल होण जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए सारे पतवंते सज्जणा का तह दिलों धन्यवाद अते निघा जीवाएं कर रहा है। अज बड़ा ही खुशी का दिन है कि सतगुरां ने परिवारों के उपर बख्शिश की है। प्रसाद संगत जी एक गल का जरूर ध्यान रखा जाए कि सतगुरां का प्रकाश है, इस करके महाराज के सत्कार को मुख रखते हैं। दरबार दे विच गल्लां बातां करन तों परहेज रखना, अपनी सुरत अपना ध्यान असी शब्द दे विच जोड़न दा यतन करना। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही अपनियां झोलियां भी गुरु साहिब पासों आपां खुशियां ते खेड़ां दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी कंठ है जां बाणी पढ़ सकते हैं उन्हां दे चरणां विच बेनती है कि वह भी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने, वह भी नाल नाल फॉलो कर सकते हैं। आओ हुण दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सरमुख रख रहा है। काका जी गुरजीत सिंह, सपुत्र सरदार सुरेंद्र सिंह जी और माता जी करमजीत कौर, परिवार का पिछलेरा पिंड कंगणीवाल जिला जलंधर पंजाब, इस वक्त यह परिवार सरी बीसी का निवासी है। गुरजीत सिंह के दादा जी का नाम सरदार सरवण सिंह जी और दादी जी माता महेंद्र कौर, इन्हों के नाना जी सरदार दर्शन सिंह जी और नानी जी का नाम माता प्रकाश कौर है। यह सी लड़का परिवार। कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी रविंदर कौर, सपुत्री सरदार जसवंत सिंह जी और माता जी जसबीर कौर, परिवार का पिछलेरा पिंड पारोवाल जिला गुरदासपुर पंजाब, इस वक्त यह परिवार लैंगली बीसी का निवासी है। रविंदर कौर के दादा जी का नाम सरदार पूरन सिंह जी और दादी जी माता हरबंस कौर, इन्हों के नाना जी सरदार करनैल सिंह जी और नानी जी का नाम माता जोगिंदर कौर है। सो यह दोनों ही परिवारों की संखेप रूप में जानकारी। हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी और इन्हों के जो माता पिता हैं अपने अपने स्थान उपर खड़े होकर के अरदास हाजिरी लवाएंगे। बाकी साध संगत जी आप दियां रचनां विच बेनती है, आप प्रेम सहित सजे रहो। सो मैं बेनती करूँगा गुरजीत सिंह, रविंद्र कौर और इन्हों के जो माता पिता हैं वह अपने अपने स्थान उपर खड़े होकर के अरदास हाजिरी लवाएंगे जी। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर, उपरंत सतगुरों का मुख वाक ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप समूह संगतों को सरवण कराएंगे। आओ प्रेम सहित हाजिरी लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।